स्वसहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनस्यम्बुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरोस्त

कनकभूषणाय नमः ॐ खज्जोताय नमः ॐ लोलिताखिल दैत्याय नमः ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ आर्यशरण्या

जिंदगी है, तुम सब में एक चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो बुराई पास आएगी जल जाएगी, जो पाप करीब आएगा जल जाएगा। तुम सब शोले हो, मशाले हो, जो